0: So that brings us to the end of this episode of Radio Sai Vintage Bhajan Classroom. This is the first bhajan in the second batch of Radio Sai Vintage Bhajan Classroom, where again we want to share 9 bhajans which used to be sung in the 60s and 70s in the Prashant Nilayam Mandir. We have started with the first bhajan. There is more to come, more beautiful melodies, more soulful compositions, more sweet and short but lovely vibrant tunes. Dear listeners, we hope you enjoy this program. We hope you learn from this program. If you have any queries or comments, as always, you can write to us. Please send in your emails to listener@radiosai.org. We offer this endeavor with humility and gratitude at the lotus feet of our most beautiful, beloved Bhagwan.
1: You were listening to an episode of our program Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 19th January 2017 as part of Thursday Live from Prashantinilayam on Asia stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
2: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
3: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
4: भूमिका। भारतीय संस्कृति की गरिमा के पुनरुत्थान हेतु भगवान बाबा ने सन 1973 मई में वृंदावन आश्रम में ग्रीष्मकालीन कक्षाओं का आयोजन किया, जिनके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन भारतीय संस्कृति और शिक्षा प्रणाली के संप्रति स्वरूप का वर्णन करता है। इस अमृत तुल्य प्रवचन में स्वामी ने जीवन, संस्कृति और शिक्षा के अटूट संबंध को रेखांकित करते हुए संप्रति शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर स्पष्ट संकेत किया है।

0: अनेक धर्मों से संबंध विषयों, अनेक अनुभूतियां प्राप्त कर चुके महान चरित्रों के बारे में तथा हमारी भारतीय संस्कृति को अपने पवित्र चरित्रों से सशक्त करने वाले महान व्यक्तियों के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर से लाभान्वित होते हुए, अवसर का सदुपयोग करते हुए, उन महानुभावों के हीरे समान कथनों को अपने हृदयों में निक्षिप्त कर भारत के भावी निर्माता होते हुए पवित्र भारतीय संस्कृति का तुम सब पुनरुत्थान कर पाओगे, इसी विश्वास के साथ ये ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाई जा रही हैं।
1: ఇందులో పాల్గొనేటువంటి ఒక్క వారు మహా అదృష్టవంతులని చెప్పవచ్చును. ఈ అదృష్టవంతమైనటువంటి యొక్క కాలమును అపవిత్రం పరచుకోనకుండా కొంత సద్వినియోగపరిచి విన్నటువంటివి, అనుభవించినటువంటి యొక్క అనుభూతులను మీ భవిష్యత్తులో జీవితం నందు నిత్య ఆచరణగా మీరు ఉంచి ఇతరులకు దీనిని అందేటువంటి ప్రయత్నంలో పూనుకుంటారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.
0: ఇనుమే భాగ్ లేనే వాలే అత్యంత భాగ్యశాలి హే. इस मूल्यवान समय का सदुपयोग करते हुए तुम सब यहां सुने हुए विषयों को हृदयस्थ करते हुए प्राप्त अनुभवों को अपने भावी जीवन में आचरण में लाते हुए दूसरों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर सकोगे, इसी आशा के साथ स्वामी सबको आशीर्वाद देते हुए अपने प्रवचन का समापन करते हैं. उपसंहार. ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के अंतर्गत प्रदत्त अपने इस मधुर प्रवचन में भगवान बाबा ने भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा, आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता जैसे विषयों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है. स्वामी का स्पष्ट कथन है कि उपाधियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना व्यर्थ है. स्वच्छ चरित्र के निर्माण हेतु शिक्षा समर्पित होनी चाहिए. व्यक्ति में सामान्य ज्ञान के न होने पर जीवन व्यर्थ ही है. अतः जीवन को सार्थक करने के लिए आज के छात्रों को मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है. अस्तु.
2: अभी आपने भगवान बाबा द्वारा भज गोविंदम पर दिनांक 21 मई 1973 की प्रातः को दिया गया प्रवचन सुना.
3: यू आर ट्यून्ड टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मोनी ब्रिंगिंग यू 24 आवर्स अ डे द मैसेज ऑफ लव ऑफ भगवान श्री सत्य साई बाबा. रेडियो साई ग्लोबल हार्मोनी नाउ प्रेजेंट्स अ सिलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स.

जिन मन वसिया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवा मिल सतगुर सब दुख गया हर सुख वसिया मन आए अंतर ज्योत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए मिल साधु मुखी उजला।

मन किया इच्छा पूरिया पाया नाम निधान अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान गुरप्रसादी मुख उजला जप नाम दान इसनान काम क्रोध लोभ बिनसया।

पूरव राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखण हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर मया। श्री राग महला पंजवा, मेरा तन यार तन मेरा, राज रूप मैं देश सुधारा बंता अनेक बहुत रंग यार वेश, हर नाम हृदय न वसई कार्य कितै ना लेख, मेरे मानो हर हर नाम ते आए कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निदान त्याई है मस्तक होवै पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग, हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवै ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ, जियो प्राण मंतन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिलै वडियाईया दरगे पावै थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किते सही हाथ, मारा पे जीवालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटां के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल, सतगुर कै उपदेसे है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख न मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गावी है अवगुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्थार, सहजे सिव तीरतिया पवजल उतरे पार, तीर्थ वर्त लख संजमा पाईए साधु तूर, लूक मावै किस्ते जां वेखे सदा हदूर, थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर, सच पातशाही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियान सच सिर जियोन जहान, नानक जपिए सच नाम सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्यम कर हर जापना वडभागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू सब चूकै सोग संताप रहाओ, जिस कारण तन तारिया सोपर डिठा नाल, जल थल महियल पूरिया प्रभ।

सतगुरु की सेवा लाग। जो दिसै सो विनसना मन की मत त्याग रहाओ। ज्यो कूकर हर काया तावै दै दिस जाए। लोभी जंत ना जानई पख अपख सब खाए। काम क्रोध मद व्यापिया फिर जोनी पाए। माया जाल पसारिया पीतर चोग बनाए। तृष्णा पंखी फासिया निकस ना पाए माए। जिन किया तिसै ना जानई फिर आवै जाए। अनक प्रकारी मोहया बहुविदेहो संसार। जिसनो रखै सो रहै समर्थ पुरख अपार। हर जन हर लिव उदरे नानक सद बलिहार। श्री राग महला पंजवा घर दूजा। गोयल आया गोयली क्या तिस डंफ पसार। मुहलत पुन्नी चलना तू संभल कर बार। हर गुण गाओ।

दुर्लभ जन्म पायो ए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आयो ए। श्री राग महला पंजवां तिचर वसै सुहेलड़ी जिचर साथी नाल जा साथी उठी चलिया तां तनखा कूराल। मन बैराग पया दर्शन देखना का चाओ धन सो तेरा थान रहाओ जिचर वसया।

देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे, हाँ तिलकै बलिहारणै जे गुर की पैरी पाहे। साध संगत मन वसै, साध हर का नाओ, सेवट पागी नानका जिन्ना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा, संच हर तन पूज सतगुर, छोड़ सगल विकार, जिंतु साज सवारिया हर सिमर होए उदार। जप मन नाम एक अपार, प्राण मंतन जिने दिया, हृदय का आधार रहाओ। काम क्रोध अहंकार माते व्यापिया संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटै दुख अंधार। सत संतोख दया कमावै एह करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार। जो दिसै सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दो कृत।

मान अभमान मंदे सो सेवक नाही, तत्सम दर्शी संतो कोई कोट मंदा ही। कहन कहावन एहो कीर्त करला, कथन कहन ते मुगता गुरमुख कोई विरला। गत अवगत कश नजर ना आया, संतन की रेण नानक दान पाया।

पूरा सतगुर भेटिया बिनस्या सब जंजाल मेरे सतगुरा हौ तुद बिटो कुरबान तेरे दर्शन कौ बलिहार नै तुस दिता अमृत नाम रहाओ जिन तू सेवया पाओ कर सही पुरख सुजान तिना पिछे छुट्टी है जिन अमृत तिना

जिन गुर मिलिया सुभाए, सच्चे से तीरत्या दरगह बैसन जाए। करते हथ वडियाइया पूर्व लिखिया पाए, सच करता सच करण हार सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणिया सचो बुद्ध विवेक, सर्ब निरंतर रव रहया जप नानक जीवै एक। श्री राग महला पंजवां, गुर परमेसर पूजिए मन तन लाए प्यार। सतगुर दाता जी का सब सह दे आधार, सतगुर बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार, मेरे साजन हर हर नाम संभाल। साधु संगत मन वसै पूर्ण होवै काल, रहाओ गुर समरथ अपार गुर वडभागी दर्शन होए। गोरिया गोचर निर्मला गुर जीवड़े अवर ना कोए, गुर करता गुर करण हार गुरमुख सच्ची सोए। गुर ते बाहर

विश विकार, पाखंड प्रेम ना पाई है, खोटा पाज खुवार, हर जियो इउ पिरड़ावै नार, तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार, रहाओ गुरसबदी सिंगारिया, तन मन पिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास, लाल

दीपक शब्द विगासिया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहनी मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत सुहावनी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख ना जानी साचे गुर कै हित प्यार, निस अंधियारी सुतिए क्यों पिर बिन रहन विहाए। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए, जा तन कंत नारावीया ता बिरथा जो बन जाए। सेजै कंत महलड़ी सूती बूजना पाए, हों सुती पिर जागना किसको पूछो जाए। सतगुर मेली भै वसी नानक प्रेम सिखाए, श्री राग महला पहला आपे गुण आपे कथै आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू आपे मोल अपार। साचा मान महत तू आपे देवन हार, हर जियो तू करता करतार, ज्यो पावे त्यो राख तू हर नाम मिले आचार। रहाओ आपे हीरा निर्मला आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो आपे भगत बसीठ। गुर कै शब्द सलाहना घट घट डीठिया डीठ, आपे सागर बोए था आपे पारिया पार। साची वाट सुजान तू शब्द लंगावन हार, निडरिया डर जानिए बाजगुरु गोबार। आसर करता दे

कामन कामना आवई खोटी अवगणयार ना सुख पेई है साहोरै झूठ जली बेकार आवन वंजन डाखड़ो छोड़ी कंत विसार पिर की नार सुहावनी मुत्ती सो कित साध पिर कै कामना आवई बोले फादल बाद दार

सुख दाता दुख मेटनो सतगुर असर संघार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागै सुख जाए जिहवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए घट बिनसै दुख अगलो जम पगड़ै पहताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत ना साथ बिरना मैं तन बाद है भूलो मार गयाथ साचो साहेब सेवियै गुरमुख कथो काथ आवै जाए पवाईऐ पया किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटियै लिखिया लिख रजाए बिन हर नाम ना छुटियै गुरमत मिलाए मिलाए तिस बिन मेरा को नहीं जिसका जियो प्राण हम मैं ममता जल बलो लोभ जलो अभमान नानक शब्द विचारी पाइए गुणी निदान श्री राग महला पहला रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पी विकसे असनेह जल मैं जी उपाय कै बिन जल मरण तनेह मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुखे अंतर रव रहया बक्से भगत भंडार रहाओ रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी मछली नीर ज्यों अदको त्यों सुख कणो मंतन सांस शरीर बिन जल कड़ी न जीवई प्रभ जान अब पीर रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चातरक में है सार पर थल हरी आवले एक बूंद न पवी के कर्म लै सो पाई है किरत पया सिर देहे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी जल दोए आवटन आपे खवै दुध को खपन ना दे आपे मेल विशुनिया सच वड़ियाई दे रे मन ऐसी हर स्यों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खिन पल नींद ना सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवै गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणावनी करता करे सो होए ता की कीमत ना पवै जे लोचै सब कोए गुरमत होए ता पाई है सच मिलै सुख होए सच्चा निहो ना टुटई जे सतगुर पेटै सोए ज्ञान पदार्थ पाई है तिरपमन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरै जे गुण का गहक होए खेल गए से पंखनू जो चुग दे सर तल घड़ी के मुहत के चलना खेलन अज के कल जिस तू मिलै सो मिलै जाए सचा पिड़मल बिन गुर प्रीत न उपजै हो मैं महल न जाए सोहंग आप पिछाणिय शब्द भेद पति आए गुरमुख आप पिछाणिय अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेली है शब्द मिले पति आए मर्मक सो जी ना पवै विछड़ चोटा खाए नानक दर कर एक है अवरना दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख भुलै भुलाई है भूली ठौर ना काए गुरबिन को ना दिखावई अंधी आवै जाए ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए बाबा माया परम पुलाए परम पुली डोहागनी ना प्रियंक समाए रहाओ पुली फिरै दसंतरी पुली गृहता जाए पुली डूंगर थल चढ़ाए परमे मन डोलाए तरों विशुनी क्यों मिलै गर मुठी बिललाए विछड़िया गुरमेल सी हर रस नाम प्यार साच सहज सोभा कणी हर गुण नाम आधार ज्यो पावै त्यों रख तू मैं तुझ बिन कवन पतार अखर पढ़ पढ़ भुली है पेखी बहुत अभमान तीर्थ नाता क्या करे मन में मैल गुमान गुरबिन किन समझाई है मन राजा सुल्तान प्रेम पदार्थ पाई है गुरमुख तत् विचार सात अने आप गवाया गुर कै शब्द सिंगार कर ही सो पिर पाया गुर कै हित अपार गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए गुर का शब्द मन वसिया हो मैं विचों खोए नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए।
ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਆਪ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੋ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਸੱਚੋ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਮਤ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਲਾਗਾ ਤਿਸੈ ਪਿਆਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚਨਾ ਵਿਸਰੈ ਮਿਲੇ ਸਬਦ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਸੁਤਬੰਧ ਪਕਰਨਾਰ ਧਨ ਜੋਬਨ ਜਗ ਠੱਗਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਠਗੌਲੀ ਹਉ ਮੋਈ ਸਾ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵਈ ਤੂੰ ਭਾਵੈ ਸੁਖੋਏ ਰਹਾਉ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀ ਰੰਗ ਸਿਉਂ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਕੂੜਾ ਮੋਹ ਨਾ ਵੇਖ ਵਾਟ ਵਟਾਉ ਆਇਆ ਨਿਤ ਚਲਦਾ ਸਾਥ ਦੇਖ ਆਖਣੇ ਆਖੇ ਕੇਤੜੇ ਗੁਰਬਿਨ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਜੇ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਰਪੈ ਪਤ ਹੋਏ ਜੋ ਤੁਧ ਪਾਵੈ ਸੇ ਪਲੇ ਖੋਟਾ ਖਰਾ ਨਾ ਕੋਏ ਗੁਰ ਸਰਨ ਆਈ ਛੁੱਟੀਐ ਮਨਮੁਖੋਟੀ ਰਾਸ ਅਹਿਟ ਧਾਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਾਰਖੂ ਪਵੈ ਖਜਾਨੈ ਰਾਸ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭ ਡਿੱਠੀ ਠੋਕ ਵਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਆਥ ਨਾ ਲੱਭਈ ਸੱਚ ਟਿਕੈ ਪਤ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਤੂੰ ਸਾਲਾਹਣਾ ਹੋਰ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਤ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾ